0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

0: मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। कहा, इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो

0: के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमरीका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का

0: 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: कभी कभी कोई इंसान किसी जगह को इतना प्यार करने लग जाता है कि फिर वो जगह उसके काम में नहीं उसकी पहचान में उतर जाती है। जबलपुर के एक ऐसे ही कलाकार थे अमृतलाल वेगड़, जिनके लिए नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं थी। 3 अक्टूबर 1928 को जन्मे वेगड़ जी ने शांति निकेतन में कला सीखी और आगे चलकर नर्मदा के किनारों को पैदल पैदल जाना, देखना, चित्रों में दर्ज करना अपना जीवन बना लिया। सोचिए कि कोई नदी के किनारे बैठकर उसकी तस्वीर बना सकता है, लेकिन कोई नदी के साथ इतना चल सकता है कि नदी उसकी

0: कहानी बन जाए। यही है आज का दिल का फसाना आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 FM पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7 और वादे के मुताबिक आपकी दोस्त माला हाजिर है कार्यक्रम मस्त मुंबई लेकर। और मस्त मुंबई में दिल का फसाना होगा आज अमृतलाल वेगड़ की कहानी हम आपको सुनाएंगे।
1: ओरे माझी

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना। और दिल का फसाना आज हम आपको बता रहे हैं जबलपुर के एक ऐसे कलाकार थे अमृतलाल विगड़, जिनके लिए नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं थी। 3 अक्टूबर 1928 को जन्मे विगड़ जी ने शांति निकेतन में कला सीखी और आगे चलकर नर्मदा के किनारों को

पैदल पैदल जाना, देखना और चित्रों शब्दों में दर्ज करना अपना जीवन बना लिया। सोचिए, कोई नदी के किनारे बैठकर उसकी तस्वीर बना सकता है, लेकिन कोई नदी के साथ इतना चल सकता है क्या? नदी उसकी कहानी ही बन जाए। तो यही है आज का दिल का फसाना, जिसे लेकर आई है आपकी दोस्त माला। वेगड़ जी ने नर्मदा की परिक्रमा के अनुभवों को सिर्फ यात्रा वृतांत की तरह नहीं लिखा, उन्होंने रास्ते में मिले लोगों, प्रकृति, लोक जीवन और नदी के बदलते रूप को भी अपने शब्दों में पूरी तरह से जगा दी। उनकी नर्मदा पर 3 चर्चित कृतियां हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृत की नदी नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। और दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला नर्मदा प्रेम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने नर्मदा को चित्रों, कोलाज और लेखन तीनों माध्यमों से देखा। यानी एक ही नदी, लेकिन उसे देखने वाली आंखें कभी चित्रकार की थी, कभी लेखक की और कभी एक यात्री की। शायद इसलिए उनकी कहानी हमें भी पूछती है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजों को सचमुच देखते हैं, ये आपको हमें बताना है। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर नंबर नोट कर लीजिए, 8657661071, यानी कि 8657661071। और आपके जवाबों का इंतजार कर रही है आपकी दोस्त माला।

0: कभी खट्टी मीठी तकरार,
1: जब तुम चाहो पास आते हो,
0: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार। ये है अनोखे रंगों वाला FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, दिल से दिल तक।
1: मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो।

वो 107.1 FM पर 9 बज चुके हैं और हो गए हैं 59 सेकेंड। ये कहिए कि 9:01 और 3 सेकेंड हो चले हैं और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना अमृतलाल विगड़ का, जिन्होंने सिर्फ नर्मदा के बारे में लिखा नहीं, नर्मदा के बारे में बोला नहीं, ये कह सकते हैं कि उन्होंने नर्मदा को जी लिया। तो नर्मदा के बारे में वेगड़ जी की एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे आपके भेजे हुए प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हमारे पास पहुंच गए हैं बड़े दिल से। रंजन हजारीबाग झारखंड से जो है वो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, विक्रम अठावले साथ ही साथ विद्या अठावले मिरत से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से हमें सुन रहे हैं, फिरोज सिगनपुरिया गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, दीपा पालकर जिंदगी आसान नहीं होती उसे आसान बनाना है कुछ अंदाज से और कुछ नजर अंदाज से, दर्द की भी अपनी एक अदा है, दर्द भी उसे सहने वालों पर फिदा है। ये प्यारा सा मैसेज भेजा है हमें दीपा पालकर ने माहिम से। राकेश माथुर पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीकांत पाटिल वार्ड 1 से जुड़ चुके हैं, विश्वास चांदोरकर गुड मॉर्निंग से भरा एक प्यारा सा गुलदस्ता उन्होंने हम तक पहुंचाया है, और प्रमोद चिंचोलकर ने सब्जियों का जो है एक टोकरी जो है हम तक पहुंचाई है, और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है प्रमोद चिंचोलकर का उमरिया कोला से। पंकज महोड हमें सुन रहे हैं लगातार गुड मॉर्निंग के साथ, अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें सुन रही हैं, दीपाली शिरोडकर वेलकम उन्होंने लिखा है तो आपका भी वेलकम है दीपाली जी, विजेंद्र घटोला कोला से, प्रमोद कारखाने पुणे से हमें सुन रहे हैं, शुभलक्ष्मी मस्तकार भी जुड़ गई हैं गुड मॉर्निंग के साथ, किशोर नायक वो कह रहे हैं कि नर्मदा की परिक्रमा पर जाना है किशोर नायक जी को और उन्हें प्लेलिस्ट भी पसंद आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने मुझे प्यारी सी लाइन भी दी है, उन्होंने कहा है कि हमारे दिल की माला, तो कोशिश तो यही करती हूँ मैं कि जब मैं आपसे मिलने आऊँ तो आपके दिल में हमेशा के लिए रह जाऊँ। वहीं ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है वंदना सूर्यवंशी का थाने कलवा से गुड मॉर्निंग के साथ, वहीं प्रकाश शिंदे प्रणव शिंदे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं नदी के साथ चलने का हुनर जिसे आ गया समझो उसे नदी ने जीने का सलीका भी सिखा दिया, ना रुकना किसी मोड़ पर ना थकना राह में, बहते बहते समंदर से मिलने का सलीका आ गया, राह के पत्थरों से कभी वो उलझती नहीं, नदी अपने सफर में कभी थकती नहीं, तुम भी चलो उसके साथ एक उपक्रम बनकर क्योंकि बहती हुई धारा कभी रुकती नहीं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे की तरफ से हमारे पास पहुंचा है, हमने आपके लिए शेयर किया एफएम रेनबो पर। वहीं महेश नाम जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, श्रेय राउत योगेश गजानन पाटिल कुणाल महेश राउत टिगरेपाड़ा से आर्य मिलेश राउत भी हमें सुन रहे हैं। आप सभी का इस घंटे में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना, अमृतलाल वेगड़ का दिल का फसाना आज आपसे शेयर कर रही है आपकी दोस्त माला।

तो भाई नदी का काम तो होता है बहते रहना और अपनी मिठास, अपनी उर्वरता सबको बांटते चले जाना। तो आज मस्त मुंबई दिल का फसाना हम आपसे बात कर रहे हैं अमृत लाल वेगड़ की। और वेगड़ जी के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने शांति निकेतन से कला सीखी, नर्मदा के किनारों को पैदल पैदल जाना, उसे देखा, उन्हें चित्रों में दर्ज किया और नदी के किनारे बैठकर जो उनकी तस्वीर बनाई, नदी के साथ चलते हुए उसकी तस्वीर बनाई, वही कहानी वही फसाना आज हम मस्त मुंबई के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे भी देखने वाले की जो आंखें होती हैं वो कभी कभी अलग ही कुछ देख लेती हैं, और ख़ास तौर पर चित्रकार की आंखें और लेखक की आंखें जो शायद हम आम तौर पर नहीं देख पाते, क्योंकि उनका ज़िंदगी को देखने का एक अपना ही नज़रिया होता है, या ये कहें कि हर किसी का ज़िंदगी को देखने का अपना एक नज़रिया होता है, और कलाकार तो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अमृतलाल वेगड़ की कहानी में खूबसूरत बात और है, उन्होंने प्रकृति को सिर्फ सुंदर दृश्य की तरह से नहीं देखा बल्कि उसके साथ एक रिश्ता भी उन्होंने बना लिया। उनकी नर्मदा विषयक रचनाएं बाद में कई भारतीय भाषाओं में पहुंच गईं। इवन आकाशवाणी के एक विशेष परिचय के अनुसार उनकी नर्मदा वृतांत की 3 पुस्तकें हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत में भी प्रकाशित हुई हैं। साहित्य अकेडमी के रिकॉर्ड में भी उनकी गुजराती यात्रा कृति सौंदर्यनी नदी नर्मदा को 2004 के पुरस्कार से सम्मानित बताया गया है। यानी जिस नदी के किनारे के वो चलते रहे हमेशा, उसी नदी की कहानी भाषाओं की सीमाएं पार करती चली गई। दिल से निकली कहानी सचमुच कितनी दूर तक जा सकती है, ये तो जो है अमृतलाल वेगड़ की कहानी जानने के बाद पता चल ही जाता है।

वैसे भी नदी का स्वभाव हमेशा बहते रहना है। वो हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। ठहरा हुआ पानी अक्सर गंदा हो जाता है, जबकि बहता पानी हमेशा शुद्ध रहता है। इसी तरह जीवन में सक्रियता ही प्रगति की कुंजी है। और माँ नर्मदा की लहरों में जिन्होंने अपना अक्स पिरोया, शब्द और तुलिका में से जिसने अद्भुत जादू संजोया, ऐसे महान नर्मदा पुत्र को हमारा शत नमन। उनके विचारों से सदा मानवता का मार्ग उन्होंने संवारा। सादगी और सरलता की जो मिसाल बनकर वो जिए, साहित्य और कला के दीप सदा उन्होंने जलाए। बेगड़ जी की पावन स्मृतियां जो हैं वो हमेशा हमारे दिल में बनी रहेंगी। नदी के किनारों सा पावन जिनका विचार था, माँ नर्मदा की परिक्रमा ही जिनका संसार था, लेखनी से जिन्होंने संस्कृति का मान बढ़ाया, अमृतलाल बेगड़ जी को उनके जन्मदिन पर शत नमन। उन्होंने जीवन को एक नया आयाम भी दिया। तो भाई ये मैसेज हमारे पास पहुंचाया है प्रकाश शिंदे ने, प्रणव शिंदे के साथ, आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। मस्त मुंबई दिल का फसाना। वहीं विजेंद्र घटोल भी सुन रहे हैं, गाने उन्हें पसंद आ रहे हैं। किशोर नायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी कुछ लिख डाला है हमारे लिए, कई सारी जानकारियां जिनमें से काफ़ी सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इन्होंने साथ में जो बात लिखी है वो हम आपके साथ थोड़ी सी बात शेयर करते हैं। नर्मदा को समर्पित इस एक व्रती चित्रकार लेखक की पुस्तकें जो हैं जादुई कालीन की तरह नर्मदा के सौंदर्य लोक की सैर कराती हैं और उसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। वही फिरोज सिकनपुरिया जो है उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं और वो जुड़े हुए हैं, और इंटरनेशनल स्माइल डे है और वो मुस्कुराने के लिए भी लगातार सबसे कह रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है प्रशांत ध्यानेश्वर पाटिल का, थाने महाराष्ट्र से, और वो एक गाना सुनना चाहते हैं। तो प्रशांत, उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, 10:02 पर हम नमस्ते भारत में आपकी पसंद का गाना ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और दीपा पालकर जो है वो भी सुन रही हैं, वो कह रही हैं अमृतलाल जी जो नर्मदा नदी के साथ चित्रकार बनते हैं, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, ये जानकारी उन्हें अच्छी लगी। वहीं दत्तात्रेय आदत वेड़ापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत आडमुठे जो हैं धाराशिव वाशी से हमें सुन रहे हैं, अंजू अंधेरी से लगातार सुन रही हैं, और वो कह रही हैं कि FM मेरी लाइफ लाइन की तरह है। और ये मैसेज हमारे पास पहुँचा है, SP है कोई जिनका नाम उन्होंने पूरा नहीं लिखा है, तो आपसे नाला सोपारा से ये मैसेज आया है। सुनील पांचाल हैं, श्रेय राउत, मिलेश के जानन राउत, आर्य मिलेश राउत और टिगरेपाड़ा से हमें सुन रहे हैं, और वंदना सूर्यवंशी थानिक कलवा से हमें सुन रही हैं, महेश नाम जोशी भी हमें एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह एंजॉय करिए, बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो, क्योंकि आपका जो प्यार है वो भी हमें हमेशा आपके साथ नदी की तरह बहने के लिए मजबूर किए रहता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर 9:29 हो चुके हैं
1: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। आज की पहली अपडेट में मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज की सुबह बेहद सुहानी कह सकते हैं, बेहद खूबसूरत सुबह कह सकते हैं। भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। अभी अभी जस्ट जब हम आपसे जुड़े हैं उसी वक्त गोल्फ में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्फ का गोल्ड मेडल जीत लिया है और वो भी जीता है किस खिलाड़ी ने, प्रणवी ने जीता है। जी हाँ, प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियन गेम्स से पहले पदक की प्रबल दावेदारों में उनका नाम हालांकि नहीं शुमार था, लेकिन प्रणवी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए भारत के लिए महिला गोल्फ का पहला व्यक्तिगत जो सोना है, गोल्ड है एशियन गेम्स का, वो दिला दिया। ये उपलब्धि भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय कह सकते हैं। बिल्कुल साक्षी,
4: जरूर शाहिद। एंड अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि इससे पहले जो गोल्फ के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड आया था वो शिव कपूर लाए थे 2002 में। तो यानी 24 साल का इंतजार आज जाकर समाप्त होता है विद दिस ब्यूटिफुल गोल्ड दैट प्रणवी उर्स हैज बॉट फॉर द कंट्री। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा ऑल्सो क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। चलिए आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ जो आने वाली है आर्चरी की दुनिया से, जहां आज हिस्ट्री बन गई। कुमकुन महोद has created history. She became the first Indian women's recurve archer to win a gold medal at the Asian Games. जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर।

0: जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को. इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ जी जिन वाया शूट ऑफ. इंडियाज फाइनल डे एट द एशियन गेम्स 2026 बिगिंस ऑन अ गोल्डन नोट. शी हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेब्यू कैंपेन फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स. शी फिनिश्ड विद टू गोल्ड्स एंड वन सिल्वर मेडल. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कुमकुम मोहत की. एंड एज पार्ट ऑफ द वुमेन्स टीम शी वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दिस इवेंट. हर मिक्स्ड टीम सिल्वर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन दैट कैटेगरी. अल्टीमेटली शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट. शायद
1: जी बिल्कुल बात करते हैं कुश्ती की, जहां मैट पर उठा पटक जारी है. दो पहलवान जहां बाहर हो गए वही तीन पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं. भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था. मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया. उधर अंतिम पंगाल भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की एसबोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल कुश्ती है उसमें कजाकिस्तान की सुग्याला ओमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर सामना करना पड़ा. वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमागोचोई ने 10-0 से हराया था. अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और रेपेचेस खेलें. उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी.
0: जी और टैक्वांडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स. शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड. ज्योति राज यादव नाउ रिमेन्स इंडियाज ओनली होप इन द स्पोर्ट एज शी गेट्स रेडी फॉर अ राउंड ऑफ 16 मैच. और इन द सेमीफाइनल उनका मुकाबला हुआ जू जिंगी ऑफ चाइना से. वही वुमेन्स 67 केजी राउंड ऑफ 16 में ज्योति यादव जिनका मुकाबला हुआ कन्नलक चुओंचुओलिन से, वहां पर भी ज्योति यादव को हार का सामना करना पड़ा 15-4, 15-2 से, यानी 0-2 से. शी लॉस्ट दैट राउंड. शी हैज दस बीन नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट आल्सो एंडेड विद दिस लॉस.
1: अगली खबर की तरफ चलूं उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए. उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी ने बताया, उन्होंने जीत हासिल की है. जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, दो गोल्ड आए. वहीं कुश्ती में तीन पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है.
0: जी एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स. भारत इस समय है 5वें स्थान पर आज दिन की शुरुआत में. कुल उसके पास है 77 मेडल्स जिसमें 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज है. लेट्स सी हाउ द डे एंड्स फॉर इंडिया. फॉर नाउ दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शाहिद आजमी साइनिंग ऑफ. हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच ऑल सेट टू बिगिन.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 का पीरियोडिक अपडेट. यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर.
4: दोस्तों मैं भारत से भारत की
3: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना. 9:36 और ठीक 16 सेकंड हो चले हैं. आज बात हो रही है अमृतलाल वेगड़ जी की जिनका आज जन्मदिन है. नर्मदा के लिए उन्होंने बहुत काम किया और चित्र ही नहीं नर्मदा को जिया ये कह सकते हैं. और आज दिल का फसाना है अमृतलाल वेगड़ का. साथ बनी हुई है लगातार आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर पर. आपके अपने दोस्त माला.

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम आप सुन रहे हैं और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। दिल का फसाना अमृतलाल वेगड़ का, और हम जिस चीज़ को हमेशा ढूंढते रहते हैं वो खुद हमारे पास होती है, ऐसा कुछ आखिरी गाना जो है हमने आपके लिए बजाया चंदन दास की आवाज़ में। और आप सभी भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से। और ये जो मैसेज है ये हमारे पास आया है प्रकाश संदे की तरफ से। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी आवाज़ में जादू है माला दीदी, जो मायूस दिलों में भी उम्मीद जगा दे। एफएम रेनबो पर जब आप बोलती हैं तो भाई लगता है कि सुरीली धुन फिजा में आज तो मेरा दिन ही बन गया है लगता है, क्योंकि इतना प्यारा सा मैसेज जो है वो मुझ तक पहुंचा है आज शनिवार की इस खूबसूरत सुबह में। तो भाई लगता है कि कोई सुरीली धुन फिजा में घुला दे अंदाज़े बयां आपका सबसे जुदा है, हर लफ्ज़ में आपके अपनापन बसा है, सजाती हैं आप अपने शो को कुछ इस तरह कि मुंबई का हर सुनने वाला आपका मुरीद हुआ है, हवाओं में जैसे कोई मखमली एहसास खुल जाता है। इतनी सारी तारीफ, थैंक यू सो मच प्रकाश शिंदे जी। वहीं विजेंद्र घटोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद चिंचोलकर वो कह रहे हैं कि जो नदी पर आपने आज गाने बजाए हैं वो हमें बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि मैं ये गाने आपके लिए दिल से चुनकर लाई हूँ, जो गाने सुनने के बाद आप खुद नदी की तरह हल्का महसूस करें खुद को। दीपाली शिरोडकर भी सुन रही है हमें लगातार, और फिर उससे गिनपुरिया बिल्कुल आप नाराज ना हो, 9 बजे के प्रोग्राम में अगर भले ही हम आपका गाना नहीं शामिल कर पाए हैं, 10:02 पर कार्यक्रम नमस्ते भारत में आपकी पसंद का गाना हम जरूर शामिल करेंगे। ममता महेश भाटकर भी हमारे साथ जुड़ गई, गुड मॉर्निंग कह रही हैं। ममता जी आपने हमें ये नहीं बताया कि आपने हमें कहाँ से मैसेज किया है। शुभलक्ष्मी वस्तकार भी बहुत प्यार से हमें सुनती हैं, इसी तरह जुड़ी रहिए सुनते रहिए। सुरेश काशीनाथ पाटिल और वैश्वी अणिज्योत अविनाश कडू वाड़वन टिगरेपाड़ा किससे हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर नायक हर हर नर्मदे कह रहे हैं। प्रशांत ध्यानेश्वर पाटिल हैं थाने महाराष्ट्र से, गाना उनका हम ज़रूर बजाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर, और अगले घंटे में भी आपके साथ रहेगी आपकी दोस्त माला। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक तस्वीर हमेशा अपने मन में रखिए, एक कलाकार हाथ में रंगों का संसार, सामने नर्मदा की बहती धारा और पैरों के नीचे लंबा रास्ता। अमृतलाल वेगड़ ने हमें सिर्फ नर्मदा के बारे में नहीं बताया, उन्होंने हमें देखने की एक नई नजर दी। उन्होंने जीवन के एक बड़े हिस्से को उस नदी के साथ चलकर शब्दों और चित्रों में सहेजा, और शायद यही किसी कलाकार की सबसे खूबसूरत विरासत होती है। वो चला जाता है लेकिन उसकी नजर हमेशा हमारे साथ रह जाती है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त माला, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, दिल का फसाना अमृतलाल वेगड़ का आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अगला गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, द्वीपराज कोचड़ भी है, एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

तो भाई ये नदियां जो बहती है कुछ कहती है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और चलने का इस घंटे से टाइम हो चला है। वैसे अरुण सोमवंशी विक्रोली से ये कह रहे हैं कि मैं जलगांव में रहता हूँ लेकिन भाई के घर मुंबई आया हूँ और सुबह 5 बजे से मैं आपको सुन रहा हूँ। तो भाई मैं तो आपसे 8:40 पर जुड़ी हूँ लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो, क्योंकि ये तो आपके साथ लगातार 24/7 बना रहता है। तो भाई मुंबई आने पर ही नहीं, आप हमें आपके माध्यम से कहीं भी सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमें सुनना चाहते हैं। तो वही रजनीकांत पाटिल वाडवन से भी जुड़े हुए हैं और बाबा दादर से जुड़ गए हैं, किशोर नायक भी जुड़े हुए हैं और जयंत मानिक लाल जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवयानी और जयंत दवे। औरोरा आयल USA से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, ये कह रहे हैं कि भाई ऑल गुड विशेस FM रेनबो सुनने वालों को, FM रेनबो के सभी आरजेस को, FM रेनबो मुंबई को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, आकाशवाणी को, सबको इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत मानिक लाल दवे जी। और विजेंद्र घटोल अकोला से, गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे अगले घंटे में भी इसी तरह के खूबसूरत गाने आपके लिए लगातार प्ले करते रहे। वैसे शनिवार की सुबह अपने दिल से बस इतना पूछ लीजिए आज, क्योंकि हमने मस्त मुंबई पर आपको अमृतलाल वेकड़ की नर्मदा की कहानी से जोड़ा। तो दिल से सिर्फ इतना पूछिए आज के दिन कि आपके शहर, आपके गांव, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है जिसे आपने सिर्फ देखा नहीं महसूस भी किया है। और अगर वो नाम, वो जगह, वो आपको याद आ जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा अपनी दोस्त माला के साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर हमें लिख भेजिएगा FM Rainbow Hindi 25@gmail.com पर। बाकी तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम पर जुड़ ही सकते हैं और FM रेनबो तो आपका अपना चैनल है, इस पर आप हमें अपने मन की बात बता ही सकते हैं। फिलहाल इस घंटे से इजाजत इस खूबसूरत नगमे के साथ, क्योंकि JP दत्ता साहब का जन्मदिन है तो रेफ्यूजी फिल्म का ये गाना, जिसकी फरमाइश भी हमारे पास पहुंचाई गई थी लेकिन ये गाना आज इस घंटे में ज़रूर बनता था, प्रकाश शिंदे की तरफ से ये फरमाइश आई है, एंजॉय कीजिए। और मिलते हैं 10:02 पर। नमस्ते भारत, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:36। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर श्री गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल भारतीय नौवहन निगम के 65 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। जापान में जारी एशियाई खेलों में कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप मेरी बात सुनेंगे या फिर अपना जवाब तैयार रखेंगे? ये बात थोड़ी सी चुभती तो जरूर है, लेकिन शायद आज के रिश्तों की ये सबसे बड़ी कहानी है। हमारे हाथ में फोन है, सामने इंसान है, मगर ध्यान कहीं और है। कोई अपना दिल खोल कर कुछ कह रहा है और हम आधी बात सुनकर ही बीच में बोल पड़ते हैं। अरे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो आज आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर नमस्ते भारत, सुनो सुनो ए दुनिया वालों से आज हम बात करेंगे। ये बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक छोटी सी आदत की है। और आदत है क्या, हम जब कोई बोल रहा होता है तो सचमुच में उसको सुनते हैं

इस पहले गाने की फरमाइश हमारे पास पंकज महोड़ की तरफ से आई थी और फिल्म थी कच्चे धागे, साथ ही साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून ने भी इसी गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। और ये मैसेज हमारे पास आया है हजारीबाग से रंजन का, झारखंड से। वो कह रहे हैं कि बीच में बातों को काटना और टोकना बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, जब वो कह रहे हों तो लोग उन्हें सुने तो अच्छा लगता है। और ये मैसेज हमारे पास आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, अलग अलग जगह से लोगों ने एक साथ अपने नाम जो है वो शामिल कर दिए हैं, क्योंकि सबको अपने नाम जानने होते हैं, सुनने होते हैं रेडियो पर। तो भाई हमने शामिल कर लिए हैं आपके नाम और आज हम बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में सुनो सुनो ए दुनिया वालों की, क्या हम सच में सुनते हैं जब हमें कोई अपनी बात बता रहा होता है, या फिर हम आधी बात सुनते हैं, फोन हमारे हाथ में रहता है, इंसान सामने होता है मगर ध्यान कहीं और रहता है। ऐसा होता है तो सोचिए और फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं इस गाने के बाद।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर 10:25 हो चले हैं। नमस्ते भारत, मेरा बात कर रहे हैं सुनो सुनो है दुनिया वालों, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हम सच में सबको सुनते हैं या सिर्फ आधा अधूरा सुनकर उस बात के बीच में ही बोल पड़ते हैं। अजीब बात है ना, इंसान कभी कभी अपनी परेशानी का सलूशन नहीं मांगता, उसे बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो बीच में उसे रोके नहीं, मोबाइल ना देखे और ये ना कहे मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। सितंबर 2026 में बेंगलुरु में कई ऐसे शेयरिंग सर्कल्स की रिपोर्ट सामने आई है जहां लोग अपनी जिंदगी की बातें कहते हैं और सामने वाले का काम होता है उन्हें सुनना, तुरंत ठीक करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता उसी समय, कुछ बातों को बस जगह देना जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि किसी का ध्यान से सुना हुआ शब्द मैं समझ रहा हूँ कभी कभी आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर जाता है, बहुत बड़ी मदद कर जाता है। और हम भी सुन रहे हैं आपको लगातार, क्योंकि आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, तो वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनाएंगे आपको ये खूबसूरत सा नगमा, एंजॉय कीजिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, सुल्तान फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर. अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स ऑफ 20th एडिशन एशियन गेम्स 2026.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहाँ प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर डिड दैट इन 2002। यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड का गोल्फ में, जो प्रणवी उर्स भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई। इसके साथ आपको ये भी बताएं, प्रणवी उर्स हेल्ड हर नर्व्स टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, फिनिशिंग द 4-राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार। शी मेड पार ऑन द फाइनल होल एज इट सिंगापुर शैनन टैन एंड चाइनाज यिन रोनिंग हु फिनिश्ड ऑन 14 अंडर टू शेयर द सिल्वर मेडल। अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर सेलिब्रेटेड बाय डाउजिंग प्रणवी विद वाटर ऑन द कोर्स आफ्टर अ मेमोरेबल विक्ट्री।
2: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं, नागोया में भारत की 70 साल की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया। एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया। मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया। स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है।
1: Right, and now a quick update on cricket, where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first, batting India.

0: so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs, but Abhishek Sharma, who is presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
1: कुश्ती की बात कर लेते हैं साक्षी. कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है. भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे. महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया. अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे. वहीं अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया. ताजिकिस्तान के आयाला बोलोस्क्यूकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया. अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया. उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे. यहां पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली. लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं. 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली. उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे.
0: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is on the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal हैं. जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं हो चुकी है. देखना होगा कि आज दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा. फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर. नमस्ते भारत, सुनो सुनो आए दुनिया वालों. और इससे पहले कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा नगमा जिसकी फरमाइश हमें किसने की है ये भी हम आपको बाद ही में बताएंगे. इंजॉय कीजिए पहले जिस देश में गंगा रहता है.

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो है ये, और कार्यक्रम नमस्ते भारत, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों। तो भाई प्रकाश शिंदे ने बागवान फिल्म का गाना उसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है। 3 अक्टूबर 2003 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और साथ ही साथ में आज विविध भारती का 69th स्थापना दिवस भी है, इसलिए ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं विविध भारती की पूरी टीम को। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। स्नेहा ने वर्ली से हमें मैसेज किया है कि गाना उन्होंने एक फरमाइश किया है, लेकिन स्नेहा कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का गाना बजाएं। दीपा पालकर, आपकी पसंद का गाना भी हम आप बजाने जा रहे हैं। आप गुलामी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, तो ये दो गाने हम बैक टू बैक प्ले करेंगे। दत्तात्रेय आदत वेलापुर से हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि शांत चित्त से किसी किसी का कोई भी शांत एकाग्र मन से सुने तो इसका इफेक्ट अंतर मन पर होता है और उससे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकल आते हैं। विजेंद्र घटोला कोला से हमें सुन रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर भी सुन रहे हैं लगातार। पंकज महोड भी एंजॉय कर रहे हैं शो को। फिरोज सिगिन पुरिया, अजय साखरे इंदौर से जुड़ गए हैं और ये सभी चाहते हैं कि इनकी पसंद के गाने बजाए जाए। कोशिश करेंगे, पर पहले ये दो गाने बैक टू बैक ओनली ऑन एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब ये सवाल अपने घर में पूछिए, घर में सबसे ज्यादा कौन बोलता है और सबसे कम कौन सुना जाता है? बच्चा स्कूल से आया, आज क्या हुआ? पूछते ही जवाब कुछ नहीं। माँ कुछ कहना चाहती है, पापा कहते हैं अभी बहुत काम है। पति पत्नी बात कर रहे हैं लेकिन दोनों के हाथ में फोन है। दिलचस्प बात यह है कि 2026 की एक भारतीय स्कूल बेस्ड स्टडी में 960 बच्चों के बीच इंटरनेट यूज और रिस्की ऑनलाइन बिहेवियर के बीच में जब रिलेशनशिप जोड़ा गया तो पता चला कि ऑनलाइन टाइम के साथ साथ रिस्की ऑनलाइन बिहेवियर भी बढ़ गया है। तो शायद बच्चों को सिर्फ स्क्रीन से दूर करना नहीं, कॉन्वर्सेशन के पास लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और आज का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। किसी अपने के पास बैठिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या रही? फिर उसकी बात पूरी होने तक बीच में अपना अनुभव बिल्कुल भी मत जोड़िए, तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था, सलाह भी मत दीजिए, बस उसको सुनते रहिए। शायद आपको पता चले कि जिस इंसान को आप रोज देखते हैं उसके भीतर एक पूरी दुनिया ऐसी भी है जिसे शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को आज करने की और एंजॉय कीजिए अगला खूबसूरत सा नगमा जिसकी फरमाइश हमें भेजी है प्रकाश शिंदे ने।

फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है आपकी दोस्त माला का आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ बाकी है आकाशवाणी पर आपके लिए। और अनीता तो आ ही चुकी हैं स्टूडियो में, तो एंजॉय कीजिए उनके साथ भी अगले 3 घंटे, और इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए आकाशवाणी मुंबई के माध्यम से। फिलहाल माला को इजाज़त, आप बने रहिए, इंजॉय करते रहिए एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ को।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता है। दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गोपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कल ठाणे में राज्य स्तरीय महा आर पेट बॉटल एंड स्टिकर्स अभियान की शुरुआत की। एनजीओ के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमती मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र इस स्तर पर ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। और अंत में खेल समाचारों में, जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की कुंकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जिया फिल्म आलाप का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, जयदेव का संगीत, और गौर किया होगा बात हो रही थी नाचने की। जी हाँ, एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेके आई हूँ मैं आज आपके समक्ष, क्योंकि ब्रेक फ्री में हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे ये एहसास हो कि चाहे कठिनाई कोई भी हो, अगर आप हौसला न हारे तो कभी आपकी हार नहीं हो सकती। और ऐसी ही नृत्यांगना की कहानी है ये, तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की और साथ में गीत तो बजते ही रहेंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती तंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामस्वामी

भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन तो हम आगे आपको सुनाएंगे क्या हुआ, पर पहले ये गीत।

जी हाँ, बात हो रही थी लेकिन के, क्योंकि हर एक कहानी में और जीवन में भी लेकिन तो होता ही है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सक पका जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सुना रही थी, अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से तत्कालीन मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाई टांग में गैंग्रीन हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाई टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाई टांग घुटने के 3.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई।

जी हाँ, बात हो रही थी सुधा के संघर्ष की और किस तरह उसे नृत्य करने से मानो वंचित कर दिया गया, क्योंकि उनके साथ जो दुर्घटना घटी उसके बाद वो चलने में भी दिक्कत महसूस करती थी, तो नृत्य तो बड़े दूर की बात थी। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी का जवाब क्या था ये हम सुनेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

जी हाँ, ये गीत जो जल बिन मछली वाला था वो किसी तकनीकी वजह से पूरा बज नहीं पाया, लेकिन गीत बहुत सुंदर है और जिस विषय को लेकर हम चल रहे हैं उसके अनुरूप है। तो मैं चाहूँगी कि वो गीत आप एक बार फिर सुन लें, और उसके बाद तो बातें ढेर सारी होंगी ही और कहानी भी तो पूरी करनी है।

जिया जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, नृत्य से ही जुड़ा हुआ ये गीत, तो सोचा इसको दोबारा सुनना ज़रूरी है। बहरहाल चलते हैं कहानी की ओर, और साथ साथ ये भी बता दूं कि 11:30 बजे होता है हमारा कार्यक्रम स्टम्प्ड, जो दिल्ली केंद्र से रिले होता है, और 11:48 पर मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ। लेकिन कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जहां सुधा पूछती हैं अपने डॉक्टर सेठी से, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो अल्यूमिनियम की थी, और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की तो बनी ही नहीं थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू पाते हुए अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से वह पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते हुए डॉक्टर सेठी ने सुधा से कुछ ऐसा कहा जिस पर सुधा ने जिसको न केवल सुधा ने आत्मसात किया बल्कि उस पर अमल भी किया। तो ऐसा क्या कहा ये हम जानेंगे स्टम्प्ड के बाद, यानी 11:48 पर जब मैं लौटूंगी बाकी के गीत और बाकी की कहानी लेकर। लेकिन तब तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहिए कार्यक्रम स्टम्प्ड बस कुछ ही पलों में।

जी, स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में, जहां बातें हो रही थी महान नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी के बारे में और उनकी जीवनी। तो बात यहां पर रुकी थी कि वे फिर डॉक्टर सेठी से मिलने गई और इस बार अपने नृत्य प्रशिक्षक के साथ गई। तो डॉक्टर सेठी ने जब नई टांग लगाई तो फिर कहने लगे, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पाव से ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई।

फिल्म अमानुष का गीत अभी आप सुन रहे थे। तो अब कहानी का अंत यानी सफलता की सीढ़ियां कैसे फिर से सुधाने चढ़ी, इसका ब्यौरा कि सामान्य नृत्य मुद्राओं को तो वो प्रदर्शित करने में सफल हो गई थी। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो आप देखिए, महज 3 साल और इतनी मशक्कत और बिना हारे सुधा ने किस तरह सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मानो जीत अपने नाम दर्ज कराई। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव कट गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसके अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिखाया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं अपितु एक फिल्म कलाकार और बेहद सफल टेलीविजन कलाकार भी है और सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वह इसी तरह आगे बढ़ती रहें और कई सारे लोगों के मन में जिनकी आशाएं डगमगा गई है उनमें फिर से एक नया साहस भर दें।

ये कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा। 12 बजे होंगे समाचार और फिर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, जहां पर एक नए विषय को लेकर मैं प्रस्तुत करूंगी कुछ अनूठे गीत, विषय से जुड़े हुए जो गीत होंगे। लेकिन सुनिए ये आखिरी गीत फिल्म बड़े दिलवाला का, और मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए बस।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। G7 देशों ने बढ़ती तेल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। G7 देश और उनके सहयोगी अगले 4 महीनों में करीब 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में लाएंगे। शुरुआती 20 दिनों में बड़ी मात्रा में डीजल जारी किया जाएगा। अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ा है। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अधिकारी फ्लाई दुबई उड़ान की घटना से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं। घटना की जांच तय प्रक्रियाओं के तहत गोपनीयता और ईमानदारी से संबंधित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर की जा रही है। साथ ही घटना के दौरान कैप्टन स्मिथ मच्छर की हिम्मत और तुरंत की गई कार्रवाई की पूरी UAE में तारीफ हो रही है। हिंगोली और नांदेड़ जिले में आज सुबह भूकंप के झटके लगे। भूकंप का पहला झटका सुबह 7:30 के आसपास लगा, जो 3.3 रिक्टर स्केल तीव्रता का था। इसके बाद फिर से 9:43 पर 4.5 तीव्रता का तेज झटका लगा और उसके बाद कई छोटे झटके महसूस किए गए। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अंत में खेल समाचारों में, 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में आज चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पहले 2 मैच आसानी से जीतने के बाद भारत इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, मैं हूँ अनीता आज आपके साथ कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। और जैसा कि आप जानते हैं, कोशिश रहती है कि कुछ अलग करूँ, कुछ अलग विषय लेके आऊँ, कुछ अलग तरह के गीत लेके आऊँ आपके समक्ष। तो आज जो विषय लेके आई हूँ उसमें ना धमकियाँ बहुत हैं। जी हाँ, धमकी वाले गीत लेके आई हूँ, कुछ ऐसे गाने जहाँ धमकियों का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए किया गया है। अधिकतर गाने वैसे हल्के फुल्के अंदाज में लिखे गए हैं, जिनमें धमकी देना मानो अपने प्रिय को पाने की एक आखिरी कोशिश है। और कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस सफर पर, अनूठे सफर पर।

0: धमकियों वाले इस सफर पर पहला गीत फिल्म मर्यादा से।
1: अरे चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

जी हाँ, आपने सुना नहीं तो। जी हाँ, इसी तरह के शब्द आपको मिलेंगे इन गीतों में। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं, नहीं तो देख लेना। तो इस तरह के लफ्ज़ों वाले गीत बहुत आज आपको सुनाई देंगे, और जहाँ खुल्लम खुला धमकी भी है कि मैं जान दे दूँगा, मैं सूली पे चढ़ जाऊँगा, मैं फांसी लगा लूँगा, जैसे कि अगले गीत में। और कोशिश की है कि सुनहरे दौर के एक दो गीत भी मैं बजाऊँ। तो अगला जो गीत है वो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया, और रफ़ी साहब की आवाज़, और सुनिएगा इसमें जो धमकी आखिर में ये दे देते हैं।

0: की सुनिए जो जॉनी वॉकर देते हैं।
1: झांसा देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। झांसा देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। होए होए।

जी हाँ, समझ गए ना मैं क्या कह रही थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ हैं। किस तरह ये कहते हैं कि मैं फांसी लगा लूँगा और फिर गवर्नमेंट को लेटर भी लिख डालूँगा। तो बहरहाल

चलिए इस आशिक को छोड़ते हैं और एक और जोड़ी की ओर चलते हैं, जहां पर धमकियों पर धमकियां हैं और मानो एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ है धमकियों के मामले में। फिल्म का नाम, खैर गीत सुनते ही आप तो पहचान ही जाएंगे।

जी हाँ, देखा दौर पे दौर चले धमकियों के, और किस तरह होड़ सी लगी हुई थी। एक और गीत, ये कव्वाली है, और इसमें भी धमकी तो खुल्लम खुल्ला।

ही जा रहा है, तो इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, नहीं तो, जी हाँ यही ऐसे ही शब्द हैं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो इस तरह की जब बात होती है तो ये धमकी वाला गीत ही तो होता है।

जी हमें क्या लेना इन धमकियों से, हम तो प्यार से गीत सुनते और सुनवाते हैं, तो आप इसे दिल पे ना लीजिएगा। बहरहाल देखा और सुना होगा आपने इस कव्वाली को, और किस तरह प्राण और बिंदु रेखा सब नज़र आते हैं पर्दे पे, और काफ़ी कुछ हो रहा होता है, और जो समझदार हैं वो तो समझ ही जाते हैं। एक और गीत फिल्म कभी कभी का, जिसमें प्यार की मीठी नोक झोंक तो है और थाने लेके जाने की बात, यानी पुलिस थाने लेके जाने की बात हो रही है, और इशारा खैर उस गीत में था, उस कव्वाली में था। हम भी एक इशारा कर दें कि 12:30 बजे होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले, अपडेट्स होंगे जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसके बारे में, अपडेट्स 5 मिनट के होंगे 12:30 से 12:35 मिनट तक। तो छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ, दोबारा मुलाकात 12:35 मिनट पर।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर में बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा, हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स विच इंक्लूड 3 4 7 6, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा, हु मेड 51 इन 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत जरूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में ने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट नाउ।
2: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया पंडवी, उसने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की पंडवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। पंडवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन, टिन टैन तथा चीन की 3 रुहंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। पंडवी उर्स अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, वीर अहलावत 6 स्थान पर चल रहे हैं।
1: जी आज रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दे, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज, धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वाज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू secure the bronze medal in his name. आपको बता दें कि साउथ कोरिया फिनिश्ड ऑफ विद द गोल्ड इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व, डिफीटिंग जापान्स जूनियर नाकानिशी 6-2 इन द फाइनल। एज अ रिजल्ट वी सॉ दैट जापान गॉट द सिल्वर व्हाइल भारत के नीरज चौहान टुक द ब्रॉन्ज मेडल।
2: जी कुश्ती से भी हम 2 पदक यानी 2 गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्कूबी को खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 वर्ल्ड नंबर 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी हैं। हालांकि यहाँ पर अंतिम पंगाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगाल

0: पर गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
1: Right, and also a quick update from the world of volleyball, जहां Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, भारत की men's volleyball team ने इस Asian Games के अंदर इस हार के साथ अपने इस सफर का भी यहां पर समापन कर लिया। और आपको ये बता दें, भारत आज क्योंकि भारतीय representation का Asian Games का last day, और officially भी हम बात करें तो majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे, तो अब भारत अभी प्रेजेंटली है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज है। और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने, जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं, उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके। क्या भारत ये कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

जी स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम म्यूजिक एफएम में, जहां धमकियों की बात हो रही है और धमकियों से लैस जो गीत है उनकी बात हो रही है। तो ये एक कम सुना गीत फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से तू ना मिली तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और देखते हैं कि अगली धमकी क्या है।

अगला जो गीत है ना, उसमें तो जान पर ही मानो वार करने की बात है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डाकू की फिल्म है और उन्हीं के मार काट वाली जो बातें होती हैं वो तो इस गीत में भी है। और मानो मरने वालों को एक तरह से पूछा जा रहा है कि आपको मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए।

या फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत जहां पर मानो किसी से पूछा जा रहा है उसी की आखिरी इच्छा क्या है, और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि आपको मारना है कि छोड़ना है, तो बड़ी कठिन परिस्थिति, बड़ी बहुत बड़ी कश्मकश। और यहां पर एक गीत और जहां धमकी है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, पर्दे पर धर्मेंद्र नज़र आते हैं, और इसमें भी कुछ मरने मारने की ही बात है, तो चलिए इनकी भी धमकी सुन लिया जाए।

हम आपको ये बता दें कि हमारे श्रोता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और धमकियों के गीत जो है खोज खोज कर हमें दे रहे हैं, और ये गीत जो है संजय दर्शन जी ने सुझाया, तो संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

यह देखते देखते अब आखिरी गीत यानी आखिरी धमकी पे आ गए, ऐसा कहूँ। खैर, हम कहाँ धमकी देते हैं, धमकियाँ तो गीतों में हैं। खैर, हमें माफ़ करे। आखिरी जो गीत है उसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग है इस गीत में, और कहीं ना कहीं जहर खाने की बात है। खैर, भगवान बचाए उन दोनों को। और मैं तो अब चली, 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार, 1:05 पर फिर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले अगर आपको कोई फरमाइश भेजनी हो या फिर कार्यक्रम संबंधी कोई प्रतिक्रिया देनी हो, 8657661071 यानी 8657661071। साथ ही आप हमें हमारे जो

रेडियो के नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर, उस पर भी फोन कर सकते हैं। आप मुंबई के बाहर से फोन कर रहे हो तो 022 एसटीडी कोड यानी 022 अवश्य लगाएं। नंबर इस प्रकार से है 4515 4132 और 4515 4133 यानी 4515 4132 और 4515 4133।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जहाँ पर आप अपनी फरमाइशें भेजते हैं और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश यह रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं की फरमाइशें, खासकर वो जो नई तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं या पहली या दूसरी बार जुड़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फरमाइश सुन सके। और ये जो शुरुआत हो रही है, ये जगन्नाथ केदारे जी की फरमाइश है। ये खंडाला के ब्लाइंड होम से हमें फरमाइश भेज रहे हैं, सुनना चाहते हैं फिल्म अनीता का गीत। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की पसंद का ये गीत। और ये दिव्यांग है, लेकिन मतलब बड़े ध्यान से सुनते हैं, अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो वो तुरंत पकड़ भी लेते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं ऐसे श्रोताओं के जिनका प्यार हमें मिलता है।

अगली जो पेशकश है वो है पंकज मोहर जी की पसंद, अमरावती से ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं और ये अपने पिता को ये डेडिकेट कर रहे हैं। ये गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आज उनकी पिताजी की पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर वे अपने पिता को याद कर रहे हैं। तो लीजिए पंकज जी आपकी पसंद का ये गीत। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि नए श्रोताओं के जो फरमाइश है हैं उन्हें हम शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार को बढ़ाना समृद्ध करना बेहद आवश्यक है। दूसरा कि एक ही अंतरा बजेगा क्योंकि फरमाइश करने वाले बहुत सारे लोग हैं और अगर पूरा पूरा गीत बजा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल सुनते हैं पंकज मोहर जी की पसंद का गीत।

अगली जो फरमाइश करने वाली हैं हमारी श्रोता ममता जायसवाल मुलुंड मुंबई से, वो भेज रही हैं ये गीत साजन मेरा उस पार है, और ये अपने हम सफ़र को डेडिकेट कर रही है इस गीत को। तो लीजिए ममता जी, आपकी पसंद का ये गीत।

जो पसंद है वो प्रमोद चिंचोलकर जी की है, और ये डेडिकेट कर रहे हैं अपने ही एक श्रोता मित्र को, प्रकाश शिंदे जी को ये गीत। तो लीजिए प्रमोद जी, आपकी पसंद का गीत, और प्रकाश जी ये आपके लिए मौका होगा तो ज़रूर इनके पसंद के और जो गीत होंगे वो बजाऊंगी, नहीं तो अन्य श्रोताओं के लिए भी गीत। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं अन्य श्रोताओं की, तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगी, लेकिन ये गीत सात समंदर पार, तो लीजिए प्रमोद जी और प्रकाश जी आपके लिए।

अगली जो पसंद है वो है गगनदीप जी की, जो नवा शहर पंजाब से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। ये सुनना चाहते हैं फिल्म एक राज का गीत लता जी की आवाज में, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। तो चलिए गगनदीप जी, आपके साथ साथ हम भी सुन लेते हैं इस गीत को।

एग्जैक्टली जो पसंद है वो है दीपा पालकर जी की, ये मुंबई से ही हमें भेज रही हैं और ये फरमाइश कर रही है जेपी दत्ता जी के फिल्मों के गीतों की। और आज चूंकि जेपी दत्ता जी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म रेफ्यूजी का ये गीत हम डेडिकेट कर रहे हैं जेपी दत्ता जी को और तमाम कई जो श्रोता हैं जो शुभकामनाएं भेज रहे हैं, धन्यवाद।

अगली जो पसंद है वो है शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी की, और ये सुनना चाहती हैं फिल्म अभिमान का गीत पिया बिना, और बांसुरी शब्द का किस तरह बासिया कर दिया है गौर करिएगा। तो शुभ लक्ष्मी जी आपकी पसंद का ये गीत। साथ ही ये बता दूं कि 1:30 पर यानी 1:30 बजे होंगे अपडेट्स, हमारे एशियन गेम्स के 5 मिनट का अपडेट होगा और उसके बाद फिर कार्यक्रम होगा हिट एंड हॉट, शेष गीत शेष फरमाइशें जो होंगी वो शामिल की जाएंगी।

स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। पेश है फिल्म आराधना का गीत मेरे सपनों की रानी। अजय साखरे जी इंदौर से सुनना चाहते हैं और गौर करिएगा कि इसी मुखड़े से एक और गीत बहुत पहले यानी सहगल साहब की आवाज़ में शाहजहां फिल्म के लिए बनी थी, जिसमें रफ़ी साहब ने भी एक लाइन गाया था। तो मुखड़ा वही था लेकिन गीत अलग। तो चलिए सुनिए अजय साखरे जी की पसंद का ये गीत।

अगली पसंद है प्रणव शिंदे जी की और ये सुनना चाहते हैं फिल्म वंश का गीत मैं तो दीवानी हुई। तो लीजिए प्रणव जी आपकी पसंद का गीत।

अगली पसंद है राकेश माथुर जी के पुणे से। ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म अन्नदाता का गीत, सलिल चौधरी की, बेहद मुश्किल और ठहराव से भरा हुआ ये जो गीत है। तो चलिए राकेश जी, आपकी पसंद का गीत।

अगली पेशकश है सत्यम शिवम सुंदरम का जो शीर्षक गीत है वो फिरोज सिगन पुरिया जी फरमाइश करने वाले हैं, और ये चाहते हैं कि इसे डेडिकेट किया जाए मेंबर्स ऑफ व्हाट्सएप वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप को। और साथ ही ये भी बता दूं कि कुछ श्रोता हमें स्टूडियो में फ़ोन करके कह रहे हैं कि गीत पूरे पूरे बज नहीं रहे, गीत तो अच्छे हैं लेकिन बज नहीं रहे। अब बताएं कि कितने सारे श्रोता हैं जो फरमाइशें भेज रहे हैं, तो ऐसे में दोनों के साथ न्याय कैसे किया जाए ये आप ही हमें बता दें, या फिर आप तय कर लीजिए कि कौन से दिन आप फरमाइश भेजेंगे और बाकी कौन से दिन बाकी के श्रोता, हो सकता है उससे फिर सभी का काम बन जाए। बहरहाल फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत।

जी हाँ, आखिरी गीत ये है विजेंद्र घाटोल जी की पसंद का। ये अकोला से हमें फरमाइश भेज रहे हैं, तो ये सुनना चाहते हैं गीत प्यार में कभी कभी। ये गीत फिल्म चलते चलते से और साथ में, जैसे कि आपने गौर किया होगा, कई सारे श्रोता हैं जिनके गीत शायद मैं बजा नहीं पाए। प्रमोद

नहीं माफ करिएगा, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, संदीप कुमार जी, गुरमीत सिंह और मीता सिंह, यशवंत आड़मुटे, दिग्दर्शन और कविता अभिजीत गवहनकर, तो कई सारे, मिंटू थॉमस, एच एस भाटिया, स्वर्ण सिंह, लाल गिरी गोस्वामी, हीरा मणि वर्मा, हरजिंदर छिंदा जसवीर, डी कैस्ट्रो जॉन, अमित भगत, मेहर अरोड़ा, हितेंद्र दास, सुरेश वैष्णव, तो इनके नाम मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और साथ में ये भी आपसे गुजारिश है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य यदि हमें भेजे फरमाइश अलग अलग नामों से तो फिर अन्याय ही होता है। तो ये आप सब श्रोताओं पे छोड़ती हूँ कि आप आपस में तय करें कि कौन से दिन कौन सा व्यक्ति जो है फरमाइश भेजेगा। बहरहाल छोड़े जाती हूँ विजेंद्र घाटोल जी की पसंद के इस गीत के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड जो है खुशगवार गुजरेगा। ज़रूर फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।

0: भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75% से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में US इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे

0: उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत चार साढ़े चार वर्षो में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना

0: सेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अपडेट का
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 पर ताजा अपडेट के साथ। घड़ी की सुई में 2:30 बज गए हैं और आज की सबसे खास बात है कि गोल्ड मेडल की हैट्रिक लग गई है। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं, लेकिन आने वाले 1 घंटे में कुछ और पदक भारत की झोली में आ जाएंगे। उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे और अगले 1 घंटे में 3 बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन जैसा मैंने बताया जारी है। भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के अयाल बेलोविस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला DPR कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर है। वहीं मौजूदा रैंकिंग अमन की बात करें 20 है। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग वहां अंतिम पंगाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए। अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे। अंतिम पंगाल

0: जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा, उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है जापान की, क्वे का मोए, उनसे सामना होगा जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। वहीं दो और मेडल आने वाले जिनके बारे में बता दूं, दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला सागर जगलान रिपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई। कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला, जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका, हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी, यानी अमन सारावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है।
1: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा। तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में, और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन अस द गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटिजेंट के अंदर, दो गोल्ड लेकर आया भारत के। आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप, एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स, उसमें हसन नवाज को दो बार जीवन दान भी मिला, इसी वजह से पाकिस्तान शायद 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेस द टारगेट। ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा, दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल्फ से, यहां पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया था तो वो 2002 में था, जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे। और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा, अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता। वहीं आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया, दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफकोर्स एन इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा दीवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो शाहिद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का, क्या लास्ट डे इंडियन पार्टिसिपेशन का।
0: जी बिल्कुल, लास्ट डे, अभी कई मेडल आने बाकी है, कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता, ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी, जो 9 साल तक लगातार अजेय थी, 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, 155 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता था। 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर कोरिया की विश्व पदक जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको ये भी बता दूं, इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाई दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

पण झालं काय माहितीये, गेला रडत रडत स्वतःच ढसा ढसा

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है साक्षी मांडवार। बेहद शानदार अमन सहरावत ने प्रदर्शन किया, ओलंपिक मेडलिस्ट ने आज क्या कमाल की कुश्ती लड़ी है। पीछे होते हैं आगे होते हैं, इस तरह से लगातार उठा पटक के बाद ये फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आया। 57 किलोग्राम की कुश्ती थी, अमन सहरावत ने एशियन गेम्स के जो आज का फाइनल मुकाबला था शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की फ्री स्टाइल की 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल की शुरुआत अमन के पक्ष में रही, उन्होंने मुकाबले में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग ने जोरदार वापसी की और स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया। मुकाबला जो था निर्णायक मोड़ तक पहुंचा और आखिरी मिनट में अमन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पर अमन ने अपनी असली ताकत दिखाई। मुकाबले में करीब 1 मिनट बाकी रहते ही उन्होंने शानदार टेकडाउन लगाया, चोंग सोंग को नीचे गिराकर अंक हासिल किया और देखते ही देखते स्कोर 11-7 पहुंच गया। इसके बाद अमन ने अपनी बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अमन का दिन सिर्फ फाइनल तक पहुंचना ही नहीं था, उन्होंने जो आज मुकाबले जीते वो कमाल के मुकाबले थे। उन्होंने इससे पहले जापान की यामातो ओगावा को 20-9 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदात एतानो को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने जबरदस्त वापसी की और ताजिकिस्तान के एयाल बोले स्वेस्की के खिलाफ राउंड में जो पहला राउंड था 2-6 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने अगले राउंड में 12 अंक बटोरते हुए 14-8 से जीत दर्ज कर ली। और आज का मुकाबला क्या शानदार मुकाबला था, यहां पर अमन ने दिखाया क्यों ओलंपिक मेडलिस्ट, अमन ने दिखाया क्यों वो चैंपियन की कुश्ती लड़ते हैं, क्यों एक चैंपियन पहलवान है। क्योंकि पीछे जब होते हैं वहां से चिंता की लकीर जरूर कोच के चेहरे पर थी, चिंता की लकीर

0: अपने दशकों पे थी, लेकिन जब वापसी करते हैं तो बैक टू बैक पॉइंट हासिल करते हुए मुकाबले को जीत लेते हैं और भारत के जो झोली है उसको स्वर्ण पदक एक और झोली डाल देते हैं और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 20 तक पहुंचा देते हैं। साक्षी
1: जी शाहिद, थैंक यू सो मच एंड वी गिव यू अ क्विक अपडेट आल्सो नाउ एज टू हाउ हैज द डे बीन सो फार फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स जो आज के दिन में अब घटित होने वाला है द इंपॉर्टेंट बिग गेम कमिंग अप इन हॉकी जहां हम देखेंगे इंडिया इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। में बात कर रही हूं भारतीय मेन हॉकी फाइनल मैच का। आपको याद दिला दे कल भारतीय महिलाओं ने डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना को 44 साल बाद इनफैक्ट कल हरा कर 44 साल बाद भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया एशियन गेम्स के मैदान में और आज उम्मीद करेंगे कि भारतीय मेन मलेशिया को हराकर वो गोल्ड हॉकी में भारत के नाम करवाए। अ क्विक रैप एट हाउ द डे वेंट सो फार फॉर इंडिया आल्सो वी विल हैव अ लुक। सो फार इट्स बीन अ वेरी एक्शन पैक्ड डे फ्रॉम एन इंडियन एंगल इन आर्चरी 17 ईयर ओल्ड कुमकुम मोहत प्रोड्यूस्ड रिमार्केबल परफॉर्मेंस टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड मेडल। हर विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट एंड हम इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इंडिया आल्सो सिक्योर्ड अनदर आर्चरी मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। नीरज चौहान डिफीटेड कंपैट्रियट धीरज बम्बा देवरा 6-4 इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच आफ्टर बोथ इंडियंस हैड फॉलन शॉर्ट इन द रिस्पेक्टिव सेमीफाइनल्स। धीरज हैड अर्लियर लॉस्ट 3-7 टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक व्हाइल नीरज वेंट डाउन 1-7 अगेंस्ट जापान्स जूनिया नाकानिशी। और फाइनली दो भारतीय आर्चर्स आमने सामने आए जिसमें बाजी मार गए नीरज अपने पक्ष में और उन्होंने वहां से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गोल्फ में भी एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जहां प्रणवी उर्स वन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले गोल्ड मेडल। शी फिनिश्ड द 4-राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार 1 स्ट्रोक ahead of China's Jin Ruong and Singapore's Shannon Tan. And finally, जैसे अभी आपको शाहिद ने रेसलिंग के बारे में बताया, क्रिकेट के अंदर आज हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम गेटिंग अस अ गोल्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है। भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस कैपनाओ के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ सागर का एशियन गेम्स में जो अभियान था चौथे स्थान पर समाप्त होगा। यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि सागर जगलान भारत के पदकों की जो संख्या वहां इजाफा करेंगे, लेकिन अभी दो कुश्ती बाकी है, अंतिम पंघाल की कुश्ती बाकी, दीपक पुनिया की कुश्ती बाकी। यहां उम्मीद करेंगे कम से कम यहां पर अंतिम पंघाल जो खिताबी मुकाबला लड़ेंगी, स्वर्ण पदक का मुकाबला लड़ेंगी, वहां उम्मीद है वो एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। वही दीपक पुनिया कांस्य पदक का मुकाबला लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे वहां भी वो कामयाब हों।
1: जी एंड बिफोर वी रैप अप, क्विकली गिविंग यू अ मेडल टेबल काउंट आल्सो। भारत इस समय 5वें स्थान पर है, कुल मिलाकर 82 मेडल्स 20 गोल्ड 26 सिल्वर 36 ब्रॉन्ज के साथ। भारत और मलेशिया का गोल्ड मेडल का मुकाबला हॉकी में अब शुरू होने जा रहा है। देखेंगे अगर यहां से भारत जीता तो एक और गोल्ड भारत के नाम होगा एंड वी स्टैंड टाइड इन दैट केस विद उज्बेकिस्तान, लेकिन उसके लिए हमें 70 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या भारत ये स्वर्ण मेडल जीतता है इस मुकाबले में कि नहीं। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ जुड़ेंगे 1 घंटे बाद 4:30 विद द लाइव अपडेट्स वंस अगेन।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: एशियन गेम 2026 से है लाइव अपडेट्स बघायला खाणे ऐकायला जाम मजा येते बरं का। भारत माता की जय। आणि आता पुन्हा एकदा आपल्या मराठी भाषेचा गौरव। खरंच एक तासाच्या प्रतीक्षेनंतर मी सुद्धा उत्सुक आहे नक्की या गेम्समध्ये काय होतं हे ऐकायला। पण आता मात्र मगाशी आपण आलो होतो नाकावरती आणि आता मी येणार आहे तोंडावरती। तोंडाला कुलूप लावणे म्हणजे गप्प बसणे, तोंड भरून कौतुक करणे म्हणजे एखाद्याची मनापासून स्तुती करणे, तोंड घशी पडणे म्हणजे एखाद्या प्रयत्नात अपयशी होणं किंवा फजिती होणं, तर तोंडाला पाणी सुटणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीची चव बघून खायची इच्छा होणं। या वाक्प्रचारांमध्ये इतकी गंमत आहे की नाही, तोंडाचा प्रत्यक्ष उपयोग न करता त्याच्यातून वेगवेगळे अर्थ सुचित होतात। उदाहरणार्थ एखाद्यानं परीक्षेत उत्तम यश मिळवल्यावर त्याचं तोंड भरून कौतुक केलं जातं, पण बढाया मारणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष कृतीत अपयशी ठरली की तोंड घशी पडते असं म्हटलं जातं। मराठी भावगीतांमध्ये वदन, मुख, तोंड यांचाही उल्लेख आहे, उठांवरचा उल्लेख आहे, अशी कितीतरी गाणी आहेत नाही का. मनातील भावना शब्दातून सुरातून बाहेर पडतात तेव्हा गाणं उठावर येतं, शब्द जपून वापरायला लागतात, गोड बोलावं लागतं आणि हे सुद्धा आपल्याला भाषेने शिकवलंय नाही का. तर हे वदन मुख यावर आधारित असलेलं पुढचं गीत

0: खरंच किती छान छान नाट्यसंगीत आहेत. आणि एकीकडे आपण घराण्याची गायकी या अर्थानं समजून घेतोय की ही सगळी गाणी इतकी सुंदर आहेत की त्या कुठल्या तरी रागावर आधारित आहेत आणि तो राग अर्थात शास्त्रीय संगीताच्या त्या घराण्यांच्या गायकीवर आधारित असा राग आहे. तर आपण आत्तापर्यंत बघितलं की ग्वाल्हेर घराणं असेल किंवा किराणा घराणं असेल, जयपूर अत्रौली घराणं असेल, ही जी सगळी घराणी आहेत याच्यातून आपल्याकडे अतिशय सुंदर शास्त्रीय संगीताचे गायक तयार झाले आणि त्यांनी इतकी जबरदस्त गाणी मांडली की त्याच्याविषयी आपण काय बोलणार. आता आपण भेट देणार आहोत अशा एका घराण्याला जे घराणं अतिशय गाजलं आणि ते घराणं आग्रा घराणं. या घराण्याची गायकी म्हणजे दमदार आवाज, ध्रुपदाची गंभीरता, लयकारीची प्रभावी अशी पद्धत. आग्रा घराण्याच्या गायकीचा ध्रुपदावरती खूप प्रभाव आहे. अर्थात आता मी शब्द वापरतीय ध्रुपद, धमार, हे सुद्धा शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास करणाऱ्यांना अगदी व्यवस्थित पोहोचणारे शब्द. त्यामुळे आवाजाचा खुला वापर, नोमतोम आलाप किंवा बोल आलाप ज्याला आपण म्हणतो बोलताना, यांना या प्रकारात खूप विशेष महत्त्व दिलं जातं. बंदिशींच्या शब्दांवर विविध लयकारी करणं आणि तिहायांच्या साह्यानं समेवर येणं, तिहाई म्हणजे तीन वेळा चक्राकार गतीनं बंदिश घेऊन समेवर येणं, ही या घराण्याची खासियत आहे. उस्ताद फैयाज खा हे या घराण्याचे अत्यंत प्रसिद्ध गायक होते. त्यांची दमदार गायकी किंवा रागाची भक्कम मांडणी आणि लयकारी ही रसिकांना खरंच विशेष आवडीची आणि काय म्हणू त्याला एक इटका.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी. घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और हम लेकर आ गए आपके लिए अभी के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. आज का दिन ऑलमोस्ट समापन पर है. खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय नजरिए से कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी किस किस इवेंट के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे. रेसलिंग के अंदर एक बाउट और बचा है और अभी हमारा हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है. लेकिन ये फाइनल मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज अप अगेंस्ट मलेशिया इन द मेन्स हॉकी फाइनल्स फाइटिंग फॉर द गोल्ड मेडल. यस, एंड इंडिया ऑलरेडी हैज अ लीड ऑफ 1 ओवर मलेशिया. द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1. जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट ओवर भी नहीं हुआ है. फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और भारत ने, अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इनफैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चली रहा है. वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट. भारत की तरफ से बता दूं कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 करवाए थे. वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 करवाया. द मैच इज स्टिल ऑन, वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीड.
3: बिल्कुल, 2 भारत के पक्ष में आ सकता है. हॉकी की जैसा आपने बात की, भारत यहाँ पे लीड पे. दूसरा जो आपने बताया कुश्ती के मुकाबला एक बाकी, जी हाँ, उस मुकाबले में भी अंतिम पंघाल अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा. लेकिन हाँ, एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है. ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में भारत के दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था वहाँ कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया. दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है. इससे पहले उन्होंने हांगझो 2023 में रजत पदक हासिल किया था. इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा.
2: जी, एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 व्हेन इट कम्स टू सीइंग आर इंडियन प्लेयर्स, आर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना. सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आर इंडियन गोल्फर प्रणवी उर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026. दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट.

0: The last time an Indian won an individual gold in golf was Shiv Kapoor 2002 में जी हाँ और आपको ये भी बता दें कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स की उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ येजिन बाय shoot off and thereby we saw her bringing the coveted gold creating history for India
1: ji ek aur kaansya padak bharat ke khate mein aate aate reh gaya hai sagar jaglan apna kaansya padak ka muqabla haar gaye wahi aman sarawat ne shandar pradarshan karte hue gold medal jeet liya jahan aman ne final mein uttar korea ka han chong song ko 11-7 se haraya muqable ki shuruaat mein aman 4-1 ki badhat bana li thi lekin chong song ne zordar wapsi karte hue score 7-6 apne paksh mein kar liya aur aakhri मिनटों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया लेकिन दबाव के इस पल में अमन ने शानदार टेकडाउन लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और स्कोर 11-7 करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया
0: जी और आर्चरी के अंदर ही आपको ये भी बता दें कि हमने देखा कि कैसे दो भारतीयों का भी आज एक मुकाबला हो गया पद ब्रॉन्ज मेडल मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बम्बा देवारा की जिसमें नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि दो भारतीय थे द गुड न्यूज ऑफ द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वॉज नीरज एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 एंड टैक्वांडो ज्योति यादव आल्सो लॉस्ट टू कनलक चोनकोलिन 0-2 एंड देयरबाय भारत की कैंपेन स्पोर्ट के अंदर आके खत्म हो
1: जी बिल्कुल और भारत अब जो मेडल टेबल उसके चौथे पायदान पे पहुंचने के बेहद करीब है देखना होगा क्या वहां पहुंच पाता उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड भारत के 20 गोल्ड है अभी 2 गोल्ड भारत के पक्ष में आ सकता है कुश्ती और हॉकी से देखना होगा अगले घंटे में क्या कुछ घटित होता है तस्वीर साफ हो जाएगी जरूर बताएंगे फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया
3: एशियन गेम्स 2026 हा अपडेट आपण एक तासाने ऐकला खरंच आहे भारताला सुवर्णपदकांची जी जो काही खजिना मिळतोय क्या बात आहे आणि असाच एक एक तासाचा अपडेट आपल्याला मिळत राहणार आहे आणि आपणही सांजेच्या बारीमध्ये आता पुढे सरकणार आहोत आग्रा घराण्याच्या गायकीचा आपण छानपैकी अंदाज घेतला आणि त्याच्यावरचा आधारित त्यावर आधारित नाही म्हणता येणार पण त्याचा स्वभाव कळेल असं एक नाट्यपद मी आता तुम्हाला नक्कीच ऐकवते आहे लगेचच

5:07 हो रहे हैं। आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर, मेरी यानी सोनम के साथ हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और अभी भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह एंड हर्षदीप कौर की आवाज में गाना। और आज लव यू जिंदगी में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आमतौर पर हमारे साथ काफी होती है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा दिमाग है वो हमारा साथ नहीं दे पाता है। एंड ये बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आप कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, कभी कोई इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो आप भूल जाते हो, कभी

भी लोगों के चेहरे याद नहीं रहते हैं। तो इस टॉपिक के आसपास आज लव यू जिंदगी का जो ये थीम है वो बेस्ड है। पर फिलहाल क्योंकि शो की शुरुआत हुई है और एक ही गाना प्ले हुआ है, हम बढ़ते हैं आगे अगले गाने की तरफ। इस गाने को गाया है शंकर महादेवन ने, दिस इज फ्रॉम द मूवी झूम बराबर झूम। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

5:19 मिनट हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। विशाल डडलानी की आवाज में आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये वाला गाना। एंड हम बढ़ रहे हैं आगे हमारे शो में जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मैंने आपसे कहा था कि इस आवर का थीम ये है कि आप ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी लोग नाम भूल जाते हैं, कभी कभी चेहरे भूल जाते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हैं। जानना चाहती हूँ आपसे, आप कौन से टाइप के इंसान हैं, क्या भूलते हैं आप जो कि डेली चीज़ों में या रोज़मर्रा की चीज़ों में आई वुड से सिचुएशंस में काम आती हैं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कई बार चेहरे भूल जाती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट किसी से बहुत अच्छी तरह से किसी के चेहरे पहचानने को मुझे आई थिंक 2 या 3 मीटिंग्स तो लगते ही हैं। एंड ऐसे कुछ लोग होते हैं जो डेट्स भूल जाते हैं, जो नंबर्स भूल जाते हैं, फ़ोन नंबर्स हो गए। फ़ोन नंबर्स तो खैर आजकल किसी को याद नहीं रहते क्योंकि डायरेक्टली हमारे फोन में सेव कर देते हैं हम, तो अभी उतनी एफर्ट नहीं लेते जितनी शायद पहले लिया करते थे फोन नंबर्स को मेमोराइज करने की। कुछ लोग एड्रेस भूल जाते हैं, कुछ लोग जगह के नाम भूल जाते हैं। तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप कौन से टाइप के इंसान हैं। 8657661071 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड जब तक आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं बैक टू बैक गाने। जो अगला गाना है इसे गाया है वाजिद ने, दिस इज फ्रॉम द मूवी तेरी मेरी कहानी। और इसके बाद कौन सा गाना आएगा वो जानने के लिए ट्यून इन रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शाम के 5:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और दोस्तों, आपको इस अपडेट को शुरू करने से पहले बता दें कि भारत का सफर एशियन गेम्स 2026 के अंदर आकर अब ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। जी हाँ, भारत के सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स अब यहाँ पर आकर समाप्त हो गए हैं आज। और चलिए आपको सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर देते हैं आज के दिन की, जिसपे आज भारत ने अपने एशियन गेम्स का सफर समाप्त किया, वो है एक मीठे से गोल्ड मेडल के साथ। जी हाँ, जो कि आया हॉकी में, जहां भारत ने मलेशिया को 5-1 से आज हरा दिया। एंड दिस इनफैक्ट मार्क्स अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द डिपेंडिंग चैंपियंस, लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज बैक टू बैक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गॉट अस द गोल्ड यस्टरडे बाय डिफीटिंग द डिपेंडिंग champions China 1-0, and as a result, this is for the first time when both the men and women's hockey team have gone on to win the gold in the Asian Games. A lot of records being broken out there, milestones being set. Also, with this win, now India have booked a place for the LA 2028 Olympics, the big one. Quickly taking you down through the journey of who scored the goals for India. Harmanpreet Singh scored the goal in the 11th minute, penalty corner conversion. Then Jugraj Singh in the 23rd minute, Hardik Singh, Shilanand Lakra, and finally in the 57th minute, Harmanpreet Singh once again came back to convert a penalty corner. Malaysia ki taraf se Shilo Silverius ne sirf ekloata goal score kiya. 5-1 se Bharat ne jab Malaysia ko haraya, pehle quarter mein 1-1 ki barabari ho gayi thi. दूसरे हाफ टाइम में हमने देखा कि भारत ने एक और गोल से बढ़त बनाई। थर्ड क्वार्टर में भारत ने फिर से एक और गोल से बढ़त बनाई, और फाइनली लास्ट क्वार्टर के अंदर भारत ने 2 गोल मार के 5-1 से मलेशिया को आज हरा दिया।
3: बिल्कुल हरा दिया, और यहाँ पर एक पदक की और उम्मीद थी अंतिम पंगाल से कि गोल्ड लाएंगे, लेकिन वो गोल्ड से चूक गई। कुश्ती में भारत के लिए अंतिम पंगाल ने आज की अंतिम कुश्ती लड़ी और रजत पदक जीत लिया। महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो फाइनल मुकाबला था, अंतिम को जापान की मोए क्योका के हाथों 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में अंतिम 0-2 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे पीरियड के शुरुआत में उन्होंने एक अंक हासिल कर वापसी की कोशिश की। हालांकि क्योका ने इसके बाद टेक डाउन करके मुकाबले के अंतिम क्षणों में 4 अंक बनाते हुए अपना जो गोल्ड मेडल था अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स में अपना यह दूसरा पदक जीता। इससे पहले हांगझाओ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जापानी पहलवान ने आज दिखाया, वो शानदार डिफेंस कर रहे थे। हालांकि पहला हाफ दोनों पहलवान डिफेंसिव कुछ अंदाज में खेल रहे थे, रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ जब दूसरा हाफ शुरू होता है, वहां अगर कोशिश करती है अंतिम पंघाल पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन जापानी पहलवान ने सिर्फ रक्षात्मक वहां पर कुश्ती लड़ी बल्कि पॉइंट भी हासिल किए थे। अगर बता दूं, जैसा साक्षी ने बताया, भारत का अभियान खत्म हो गया, तो भारत का जब अभियान खत्म हो गया तो इसी समय कुश्ती का भी अभियान खत्म हो गया, और अंतिम जो मुकाबला था वो कुश्ती का ही मुकाबला था, जहां अब बता दें भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल में 3 भारत ने पदक जीते, ग्रीको रोमन में 2, और महिला कुश्ती में भारत ने 1 पदक हासिल किया। अगर पदक विजेताओं की बात कर ले तो अमन सहरावत ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सुजीत कलकल ने भी गोल्ड मेडल जीता, यानी दोनों गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल कुश्ती में। वहीं पर नितेश और अंतिम पंघाल ने रजत पदक हासिल किया। नितेश ग्रीको रोमन के पहलवान है, अंतिम पंघाल इसके साथ साथ रजत पदक हासिल करती, जबकि दीपक पुनिया फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतते हैं, जबकि सुनील कुमार ग्रीको रोमन में कांस्य पदक हासिल करते हैं। यानी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय कुश्ती का अभियान खत्म हो गया। पिछले अगर एशियन गेम्स की तुलना करें तो इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन

0: हालांकि महिलाओं ने कुछ हद तक निराश जरूर किया है।
1: जी एंड द हाईएस्ट इवेंट और शुड वी से द इवेंट दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया वाज एथलेटिक्स, जिसने कुल मिलाकर 24 मेडल भारत को दिलवाए हैं इस एशियन गेम्स 2026 में, जिसमें से एक गोल्ड आया, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल। जो गोल्ड मेडल आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट इट वाज द बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ गर्ल्स आउट देयर। वुमेन्स 4x400 मीटर रिले के अंदर आया था, जहां भारतीय वुमेन एथलीट्स ने हिस्ट्री रच दी। पहली बार 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को गोल्ड दिलाकर उसके बाद सिल्वर दिलाने में हमने देखा गुलवीर सिंह मेंस 10,000 मीटर में, गुलवीर सिंह मेंस 1500 मीटर में भी सिल्वर लाए, सर्वेश मेंस हाई जंप में लेकर आए, मेंस जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह थे, मेंस लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर थे, मेंस मैराथन में सावन बरवाल, मेंस शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर और वुमेन्स लॉन्ग जंप में एन सी सोजर भारत के लिए सिल्वर मेडल्स लेकर आए। वही ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो मेंस 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत की टीम ने ब्रॉन्ज जीता। कुल मिलाकर जो ब्रॉन्ज मेडल्स भारत को मिले थे आर्च एथलेटिक्स के अंदर दोस्तों, वो रहे 14, जिसमें हमारे हैं गुरवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, रोहित यादव, सीमा हरिता इन वुमेन्स 200 मीटर, पारुल चौधरी इन वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस, प्राची, विद्या रामराज, पारुल, पूजा बरानिका, इलांगजोवन और मनप्रीत कौर। ये डिटेल्स हम लेकर आपके लिए और आएंगे, लेकिन आपको एक गुड न्यूज ये भी दे दे कि भारत ने अब एशियन गेम्स का सफर अपना फिलहाल के लिए पांचवें स्थान से चौथे स्थान पर अभी अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, इंडिया प्रेजेंटली स्टैंड ऑन द फोर्थ स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 85 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 21 गोल्ड मेडल्स, 27 सिल्वर, 37 bronze. More on this we'll bring to you in the next live update at 6:30. Thank you so much for now for tuning in. This is me, Sakshi Mandwal, and Mohammad Shahid Azmi saying goodbye for now.
2: Asian Games 2026, IG Nagoya.

5:42 हो रहे हैं। आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे तमाशा मूवी से ये गाना। और मैंने यानी सोनम ने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेली के सिचुएशंस में आप याद नहीं रख पाते हैं या भूल जाते हैं। तो मैसेज हमें आया है विजेंद्र घटोल का। वो कह रहे हैं कि जो किराने का सामान है कभी कभी कुछ चीजें लाना भूल जाते हैं। अरविंद कुलकर्णी ने एक मैसेज किया कि घर से निकलते वक्त उनकी जो बाइक का स्टैंड है वो हटाना भूल जाते हैं। एंड अक्सर रास्ते पर जो लोग होते हैं वो याद दिलाते हैं कि स्टैंड आपने निकाला नहीं है। फिर मैसेज आया है हमें पंकज मोहोड़ का। वो कह रहे हैं कि वो नई जगहें हमेशा भूल जाते हैं, लोगों के चेहरे वो याद रखते हैं, जिसका प्रॉब्लम शायद मुझे है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। कभी कभी डेट्स भूल जाते हैं, बर्थडेज भूल जाते हैं, एनिवर्सरीज भूल जाते हैं। इनफैक्ट जो वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सेज जो मुझे आए हैं वो है प्रशिक बोरकर से। वो कह रहे थे कि जब बातें कर रहे होते हैं और बीच में अगर कोई टोक देता है तो जिस टॉपिक पर बात हो रही थी वो भूल जाते हैं। एंड ये भी बहुत कॉमन चीज़ है पर लोग भूल जाते हैं ऑब्वियसली, जैसे बहुत सारे लोगों को ये आदत होगी पर बताना भूल गए। और ऐसे ही अगर आप भी कुछ चीज़ें भूलते हैं प्लीज़ लेट मी नो ऑन 8657661071। इन द मीनवाइल गाने प्ले करना नहीं भूली हूँ मैं। आपके लिए आ रहे हैं बैक टू बैक गाने। जो अगला गाना है इसे गाया है रोमी ने विद तनिष्क बागची एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और इसके बाद शंकर महादेवन की आवाज़ में आप एक गाना सुनेंगे। वो गाना कौन सा है, किस मूवी से है, ये सब आप जानेंगे जब आप ट्यून्ड इन रहेंगे इसी रेडियो स्टेशन पर।

बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सुखविंदर सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे उनके एल्बम से ये वाला गाना। और हमारा शो अंदाजे बयां शुरू हो चुका है, 6:21 हो रहे हैं। आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1। मेरा नाम है सोनम और अंदाजे बयां में हम प्ले करते हैं नॉन फिल्मी ट्रैक्स, गजल्स, सूफी नगमे, इंडी पॉप एल्बम के गाने, और ये उसमें से ही एक था। और जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ मैं। इस गाने को गाया है फाल्गुनी पाठक ने। दिस इज फ्रॉम हर वेरी फेमस एल्बम तेरी याद में। और इसके बाद आप कौन सा गाना सुनेंगे उसके लिए आपको ट्यून्ड इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026। आप सबको बता दें कि भारत का ऑफिशियली जो सफर था 2026 के एशियन गेम्स में अब आकर समाप्त तो हो चुका है। जी हाँ, ऑल द इवेंट्स हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड फॉर द इंडियन कंटिंजेंट इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड विद दैट इंडिया हैज फिनिश्ड देयर प्लेस ऑन द फोर्थ स्पॉट इन द मेडल टैली। जी हाँ, चौथे स्थान पर भारत ने अपना सफर मेडल टेबल पे खत्म किया है। कुल मिलाकर भारत के पास है 85 मेडल्स, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। द डे स्टार्टेड फॉर इंडिया टुडे ऑन अ स्वीट नोट। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गोल्ड आया गोल्फ से, जहां पर एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बनी। उसके बाद आर्चरी से आया, फिर क्रिकेट ने हमें दिया और फाइनली हमें हॉकी ने गोल्ड देकर दिन की समाप्ति भी करी। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेसलिंग में भी हमें आज एक गोल्ड मिला है। इस सब के बारे में तो शायद आपको बताएंगे, बट मैं आपको एक सरसरी नजर से लेकर चलती हूँ कि मेडल टेबल के अंदर जो हमारे मेडल्स आए हैं वो किस इवेंट में कितने कितने आए। आर्चरी के अंदर हमने पाए हैं टोल कुल मिलाकर 9 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। एक ऐसा ये स्पोर्ट रहा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने कमाए अपने लिए, 24 टोटल। बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। क्रिकेट में महिलाएं और पुरुष दोनों ने ही T20 क्रिकेट के अंदर 2 गोल्ड भारत को एशियन गेम्स में दिलवाया। गोल्फ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। हॉकी में 2 गोल्ड महिलाएं और पुरुष दोनों ने भारत को अब की बार गोल्ड मेडल दिलवाया। कबड्डी में 2 गोल्ड, कुराश में 1 ब्रॉन्ज, मिक्स मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज, सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, सेपेक्टक्रो में 1 ब्रॉन्ज, शूटिंग में कुल मिला के 15 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज।
1: जी, और आज 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में आए। सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी की। कुमकुम अनिल मोहोद ने महिला रेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कुमकुम ने कोरिया की ओएन जिन को 5-6 के यानी 6-5 से कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। और हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। यहां पर मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। महिलाओं ने भी खिताब अपने नाम किया, पुरुषों ने खिताब अपने नाम किया। जिस तरह क्रिकेट में 2 पदक आए हैं गोल्ड, इसी तरह हॉकी में 2 गोल्ड आए हैं। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने जापान की मोए क्योका को 1-9 से, उनसे जो मुकाबला था क्योका से अंतिम पंघाल को 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भारत के नजरिए से देखा जाए तो जब भारत के तमाम खेल खत्म हो गए, आज के दिन 3 स्वर्ण पदक बेहद महत्वपूर्ण हैं।
0: जी, और क्योंकि हम आपको मेडल टेबल में बता रहे थे तो थोड़ा आगे चलते कुछ और इवेंट्स जो बचे हुए हैं। उसमें है सॉफ्ट टेनिस जिसमें 1 ब्रॉन्ज आया, स्क्वॉश में हमने 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज कमाए हैं, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में कुल मिलाकर 6 मेडल्स भारत ने कमाए, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, और वुशू में 1 सिल्वर भारत ने कमाया। तो इसलिए भारत ने अपना 2026 का एशियन गेम्स का सफर कुल मिलाकर 85 मेडल्स पर समाप्त किया, 21 गोल्ड, एंड होपफुली व्हेन टुमारो देयर इज एन इवेंट। उज्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमारे साथ 21 गोल्ड पर ही टाइड है, उज्बेकिस्तान का भी एक और इवेंट बचता है कल इक्वेस्ट्रियन के अंदर, तो देखना होगा कि क्या इक्वेस्ट्रियन के अंदर उज्बेकिस्तान कल गोल्ड अपने लिए ला पाता है कि नहीं। चांसेस उसके कैसे हैं, हाईली अनलाइकली कह रहे हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट्स खासतौर से, बट वी विल हैव टू सी टिल इट गेट्स ऑफिशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को माना जाएगा शायद कि हम चौथे स्थान पर ही मेडल टेबल पर,
1: बिल्कुल होप कि हम चौथे स्थान पर खत्म करेंगे। लेकिन हम उन खिलाड़ियों की भी बात, श्रोताओं तक बात पहुंचाए कि जिन्होंने एक से ज्यादा भारत के लिए मेडल जीते। भारत की बात करें तो आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, 3 पदक इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है। नीरू ने निशानेबाजी ट्रैप व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ट्रैप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं कुमकुम मोहोद ने रिकर व्यक्तिगत और टीम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड, 3 इसके अलावा सहित 3 पदक जीते, जबकि निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 2 रजत पदक समेत 3 पदक जीते हैं। यह भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक से ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे

0: बात क्या कुछ और नया ताजा आता है और भारत का क्या कुछ ओवरऑल प्रदर्शन रहा, हम अगले एक घंटे बाद आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 7:30 बजे तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

6:41 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 और हमारे शो चल रहा है अंदाज़े बयां। अभी अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज़ में ये गाना, और दिस वाज फ्रॉम द एल्बम तेरी दीवानी। इनफैक्ट इसका जो अगला जो टाइटल ट्रैक है वो भी बेहद खूबसूरत है, और हम प्ले करते हैं अंदाज़े बयां में इंडी पॉप गाने, नॉन फिल्मी ट्रैक्स, सूफी नगमे, कुछ कुछ गज़ल्स, कुछ कुछ कवालीज। और वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, कुछ 18 मिनट रह गए हैं इस शो को ख़त्म होने में, तो इससे पहले कि ज़्यादा वक्त ज़ाया हो, ये जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ, रूना लैला की आवाज़ में ये गाना, और इसके बाद कौन सा गाना आएगा वो जानने के लिए ट्यून्ड इन रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

Aswani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.

7:16 हो रहे हैं और आप ट्यून इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 और नकाश अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे फैन का टाइटल ट्रैक। मेरा नाम है सोरम और शो का नाम है हम तुम। यहाँ पर मैं प्ले करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। तो आपको ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं मुझे जो सैटरडे नाइट को जस्टिस करें, यानी कि थोड़े से स्लो गाने, थोड़े से सैड गाने साइड में रखें आज के लिए और नए गाने रिक्वेस्ट करें साल 2000 से लेके साल 2025-26 तक। और जो गाने आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको व्हाट्सएप करना है ऑन 8657661071। जो अगला गाना है दैट इज़ अ रिक्वेस्ट। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रीमा। रीमा को सुनना है शिल्पा राव एंड सचेत टंडन की आवाज़ में एक गाना। दिस इज़ फ्रॉम द मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो। और इसके बाद कौन सा गाना आएगा वो जानने के लिए ट्यून्ड इन रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर

शान, प्रिया, नीरज एंड शाजीन की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया। और इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी हमें फ्रॉम संजय दर्शन। जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ, और इस गाने की रिक्वेस्ट की है हमको पंकज मोहर ने। एंड साथ ही साथ जो गाने प्ले होने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, वक्त बहुत कम है, तो फटाफट मैं गाना प्ले करने वाली हूँ। इनफैक्ट इस गाने की रिक्वेस्ट सिर्फ प्रणव शिंदे ने नहीं की है, पंकज मोहर ने नहीं की है, बहुत सारे लोगों ने की है। तो ये जो आप मल्टीपल गाने जो प्ले को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो ना, तो इसमें ये चीज़ होती है कि एक ही गाना कुछ तीन चार लोग रिक्वेस्ट कर जाते हैं। अरविंद कुलकर्णी ने भी इस गाने की रिक्वेस्ट की है। सो दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम कपूर एंड सन्स, बादशाह, फाजिलपुरिया, सुकृति कक्कर एंड नेहा कक्कर की आवाज में है गाना। आफ्टर दैट यू विल बी लिसनिंग टू अ ट्रैक फ्रॉम राबता एंड देन देर विल बी अ ट्रैक फ्रॉम बागबान। तो ये गाने आप सुनने वाले हैं बैक टू बैक। फिलहाल 7:30 बजे होगा छोटा सा एक ब्रेक जहां पर आपको पीरियोडिक अपडेट्स मिलेंगे एशियन गेम्स के, पर फिलहाल ये अगला वाला गाना आपकी तरफ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम 2026 की आज की अंतिम अपडेट में। आज बात करेंगे भारत ने क्या कुछ हासिल किया, इस एशियन गेम्स में क्या कुछ भारत की उपलब्धियां रही और आज के दिन क्या कुछ खास रहा एशियन गेम्स में। जैसा कि आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहा, भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जबकि अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि इस प्रदर्शन के साथ भारत के पदकों की संख्या 85 कुल हो गई, जिनमें 21 स्वर्ण 27 रजत शामिल है। कांस्य पदक जिस तरह से भारत ने आज जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं, यकीनी तौर पर कह सकते हैं भारत की जो मेडल टैली उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला साक्षी
2: जी। एंड अ क्विक अपडेट आल्सो।

0: to how the day started, there were two other gold medals in this list of medals that India was able to finish with on the last day of the ongoing Asian Games. One was at the start of the day from the world of golf, where Pranavi Urs created history by clinching the gold for India at the Asian Games 2026. Along with that, Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf. Let us also tell you all that no Indian has won an individual gold in golf since Shiv Kapoor in 2002. So it was a 24-year-old long wait that finally came to an end when Pranavi Urs was finally able to get us the gold in the Asian Games 2026. Along with that, the big event of the day that happened was in the world of cricket, where it was not just the women who bought us the gold, but also the men who clinched the gold in the Asian Games today by defeating Pakistan comfortably by a margin of 19 runs. Having won the toss and choosing to bat first, India posted a mammoth score of 211 runs, while Pakistan, in return of chasing that target, was only able to chase and put on board 192. Hence, a good day for India overall, Shahid, with wrapping of the last day.
1: इस एशियन गेम्स में अगर हम मल्टीपल मेडलिस्ट की बात करें, जो वर्ल्ड लेवल पर हम एशियन गेम्स के मेडलिस्ट की बात करें, तो सबसे ऊपर हैं जो चीन की मेडलिस्ट हैं, चीन की तैराक है जांग झांगशुआ, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ऊपर बनी हैं। उनके नीचे बात करें उनके ही देश की तैराक यू इतिंग है, जिन्होंने 5 गोल्ड समेत 7 पदक जीते। इसी तरह चीन की ही तैराक जो तीसरी तैराक है ली बिंगजी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत है, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 3 पदक जीते हैं। दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर बने। वहीं अगर बात करें तीसरी खिलाड़ी की बात करें तो भारत जो तीसरे खिलाड़ी कुमकुम मोहोत के अलावा बात करें तो तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया इस लिस्ट में। कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या राम राज ने 1 गोल्ड समेत 3 पदक जीते हैं, जबकि निशानेबाज रुद्रांक पाटिल 2 रजत समेत 3 पदक। इसके अलावा बात करें तो आर्चर ज्योति सुरेखा वेन, प्रतिका प्रदीप, साहिल राजेश जाधव, जिसके अलावा चिकिता तनी पार्थी और कुशल दलाल ने भी 2-2 गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया, यानी 2-2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं।
0: Right, now let's have a look at the way India finished in the ongoing Asian Games 2026. We finished on the 4th spot in the medal table with a total of 85 medals, which includes 21 golds, 27 silver, 37 bronze. The number of events that got us the maximum number of medals were 3 basically. Athletics getting us 24 medals in totality, shooting getting us 15 medals in totality, and along with that, wrestling was just a little behind, getting us a total of 6 medals, which was also boxing along with that, which also had 6 medals, and archery 9. Now, athletics, which had 24 medals, has 1 gold, 9 silver, 14 bronze. While when we talk of shooting, which has 15 medals in total at the end of the Asian Games, includes 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
1: जी बिल्कुल, अगर हम मेडल टेबल पर नजर डालें तो टॉप 3 कंट्री एंड टॉप 3 देशों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर यकीनी तौर पर चीन है, जिसने 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज समेत 341 पदक जीते, जबकि जापान जो मेजबान है उसने 83 गोल्ड, 95 इसके अलावा रजत पदक और 91 कांस्य समेत 269 पदक जीते, जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात कर लेते 39 स्वर्ण, 43 रजत और 68 कांस्य समेत 150 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर, तीसरे नंबर पर, जबकि भारत की जैसा साक्षी ने बताया चौथा पायदान फिलहाल है।
0: Yes, indeed. And if you look back at the Asian Games 2026, then we can take a moment to just sit back and enjoy and bask in the pride and the fact that how many women out there, women athletes especially, this time dominated the Asian Games 2026. Here's to all our hard-working athletes, to the Indian players, the entire Indian contingent that went all the way to Japan to represent India and made us Indians very, very proud as citizens of this country for what our players, our athletes have achieved at the end of the Asian Games 2026. On that note, I believe it is now finally time for me, Sakshi Mandwal and Mohammed Shahid Azmi, to finally say our last goodbye as we bring the coverage of the live updates that we brought to you every hour through the medium of Akashvani every day. This has been a beautiful journey, bringing the updates to all our lovely listeners. Hope you all enjoyed tuning in and enjoyed also our updates. Thank you. Goodbye for now.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

विशाल डिलानी, अरमान मलिक एंड बादशाह की आवाज में आप सुन रहे थे ऑल इज वेल से ये वाला ट्रैक। और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें आई थी फ्रॉम दिस इज हितेंद्र दास। और इसी के साथ साथ हमें मैसेज आया था फिरोज सिगनपुरिया का भी, और ये जो रिक्वेस्ट है इसे की थी पंकज मोहर ने भी। तो एज आई सेड, एक ही गाने को तीन तीन चार चार लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एट द सेम टाइम इसके पहले जो गाना आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी राबता, इसे रिक्वेस्ट किया था चेतन कुमार ने। जो अगला गाना है इसकी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम प्रवीण, तो हम वो गाना उनके लिए प्ले करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट एक ट्रैक आ रहा है फ्रॉम दिल चाहता है, इसकी रिक्वेस्ट की है एसपी ने, नाउ सुनील पांचाल। एंड देन वी हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वैदेही आल्सो कमिंग अप। मुकेश कश्यप ने भी एक गाना रिक्वेस्ट किया है। तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं रिक्वेस्ट के लिए, वक्त कम है तो फटाफट आगे बढ़ूंगी मैं। दीप मनी नेहा भसीन की आवाज में ये गाना फ्रॉम रेस 3। एंड आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: Nadi jamais je t'aime.
0: Nadi jamais je t'aime. Ah, it's so sexy.

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोज और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8%.

0: 8% in quarter one of FY.
1: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
0: इन क्वार्टर वन ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
2: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया

0: उसमें कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
1: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
1: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
3: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
1: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। पटना से किया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। लगातार खबरों से

0: रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: You're listening to Akashwani's Rainbow Channel. Please stay tuned for the 20th edition of the Asian Games 2026 special update. It's coming up right now, just for you. We'll be back with our regular programming in 20 minutes. Stay tuned for our special report. Congratulations to our Indian contingent. What an amazing run it's been at the Games this year.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
3: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेस successfully defend their Asian Games title. Batting first, India posted an imposing 211 for 6. Abhishek Sharma led the charge with a blistering 61 of 28 deliveries, including 7 sixes and 3 fours. He brought up his half century in only 20 balls. Tilak Varma provided the finishing flourish with an unbeaten 51 of 22 balls, helping India cross the 200 mark. Pakistan's chase got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up 2 important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage.

0: Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192/6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals, and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24-year-old लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
1: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।

0: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10, while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Zingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
1: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाऊ पेंचो का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल बोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातर को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में

0: होना था, यहां दोनों टीमों के बीच एक एक अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। दो मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकेंड हाफ बाय कम्प्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th-6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0, and finally the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में दो लड़कियां थीं, कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
2: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
3: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
3: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals. But India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
3: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। ऑफ द 310 एथलीट्स मेकिंग देयर एशियन गेम्स डेब्यू, 83 हैव वन मेडल्स, 43 वुमेन एंड 40 मेन। दैट मींस मोर देन 1 in every 4 इंडियन डेब्यूटेंट हैज रिटर्न्ड विद अ मेडल। बिटवीन देम दीज फर्स्ट टाइमर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 41 मेडल्स अक्रॉस 12 स्पोर्ट्स, 14 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 15 bronze, and several performances have broken new ground for India. Sushika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10 meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a 4th appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal.

0: Weightlifting, Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years, and the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ FY20।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल है। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मोहब्बत का सफर नाजुक तो है, दिल जिस पर आ जाता है, जहां दिल ठहर जाता है उसे कह दें और इनकार मिले तो खो जाने का डर है, और मिल जाए तो भी खोने का डर है। इसलिए जो है

0: मोहब्बत का हर रंग खूबसूरत, मोहब्बत के सफर में मिले हर एहसास खास है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूं आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

0: मोहब्बत में मिले गम भी यादों का खजाना भर जाते हैं, है ना? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तुम मेरे लिए अब कोई इल्ज़ाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्ज़ाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्ज़ाम बहुत है। दिल से दिल तक, मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

बातें कहाँ पूरी होती हैं, निगाहें कहती हैं निगाहों से, दिल सुनता है बुनता है, पर एक इजहार पूरा नहीं होता। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा, अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत। सीबीआई ने मुंबई की कंपनी हंजर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंधकों और जमानतियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आइए अब ले चलते हैं आपको हमारे रेनबो चैनल पर अगले कार्यक्रम की ओर, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये मीठी धुन।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब ले चलते हैं आपको गीतों के सुरीले सफर की ओर। कार्यक्रम है जीरो आर शो, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर जीरो आर शो।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: प्लस सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी रिनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना विनिवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलजमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन की शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच जीता। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सुहानी रात के सफर पर। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है सुहानी रात।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा

मौका को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा कि ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन की शानदार पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच जीता। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुजुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर है। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें भुलाया जाना बहुत ही मुश्किल है। कार्यक्रम है भुलाए ना बने, आकाशवाणी रेनबो पर।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह, रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूड़ी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 19वां संस्करण अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। और खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते।

पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज़।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना, निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हुए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: रेनबो चैनल पर प्रस्तुत करने जा रही हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: पराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।